0: 484-1007 या सोशल मीडिया ते G9 ਭੰਗੜਾ ਐਂਡ ਗਿੱਧਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। G9 ਭੰਗੜਾ ਐਂਡ ਗਿੱਧਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਾਣ।
1: उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संदुहोरा नु 4378700001 4378700001।
2: और नाल दी नाल थोनों एक नंबर दे दिए, जे तुसी घर वास्ते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वास्ते या तुसी बेसमेंट वास्ते अपलायंसेस लभ रहे सी, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर्स, स्टोव, टीवी, बिल्ट इन अपलायंसेस, तुसी ड्रीम होम अपलायंसेस नू याद रखो 905-805-3000 ड्रीम होम अपलायंसेस 905-805-3000 विजिट ड्रीम होम अपलायंसेस फॉर द बेस्ट प्राइस, बेस्ट डील एंड बेस्ट gifts 905-805-3000 Argentia Road, Mississauga, Dream Home Appliances।
3: ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
4: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ,
5: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ,
4: ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Optical, any age, any stage, जी हाँ, आपकी specials देखने के लिए आपको optical.ca पे चाहिए, आपको वो चेक करवाने के लिए, appointment के लिए 905-400 का पर कॉल कीजिए 905-456-2733 Alpha Optical, your vision is your business.
1: Now, जी, कमाली फिर

0: down the pool, and I'll carry down again.
1: Up that is a product of Samosa and Sweet Factory at all key grocery stores.
2: आनंदपुर का भाव मन तन देह सुखाली रहा पंडित उदाहरण सतगुरु मेरा मोह किसका परवासा बंस लय सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदास सूरत महला पंजवा बख्शा पात हम परमेश्वर सगले रूप दारे की सरणी उभरे कारज सगल समारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धारे रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की साथ सबद सत पाखिया सूरत महला पंजवा भय कृपा स्वामी मेरे पित सगले दरबार सतगुर ताप कवाया भाई ठान पई संसार अपने जी जत आप ही रखे जमे कियो हटदार हर के चरण हृदय उड़तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सरणी उभरे भाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ध्याई है भाई मन तन शीतल होए सूरत महला पंजवा संत हो हर हर नाम ध्याई सुख सागर प्रभ बिसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम अधारो नानक पत राखी परमेश्वर उधरिया सब संसार सूरत माता पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला हुआ काल कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा निरुआ रहाओ ताप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई सार

शिवमुवाच देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलौ विकार्यसिद्ध्यर्थम्।

प्रकाश्यते अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनु

प्रयत् सती दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजम् तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखमय

चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो
1: 416-213-1165 रामाष्टकं पठति यः सुखतम सुपुण्यम् व्यासेन
2: मनोफिकरा सारिया कटिया जाके डिगिया नाथ तुम्हारे जो की हाथ में तोरा छतिया लुटता फिर नजारे।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और अब आपके लिए समर तो पूरी पहुंच चुकी है और बच्चों को भी स्कूल बंद हो गए हैं। आप अपने बच्चों को कोई कैंप्स में ले जा रहे हैं, कोई स्विमिंग, कोई ना कोई प्रोग्राम में आप जरूर अपने बच्चों को डालिए, ताकि समर में उनका जो टाइम है अच्छा गुजर जाए। काफ़ी सारी एक्टिविटीज हर एक टाउन में होती हैं बच्चों के लिए, तो आप जरूर वो कैलेंडर देखिए और फिर अपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसका मतलब ये हो जाता है कि बच्चों को फिर इधर उधर की कोई और गलत चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता। और माँ बाप को ही अभी छोटी उम्र में तो उनका जो टाइम होता है वो माँ बाप को ही प्लान करना पड़ता है। तो अगर आप अभी से उनका प्लान थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो उनको आदत फिर पड़ जाएगी कि हमारा जो टाइम है समर टाइम में उसमें हमें कुछ ना कुछ करना है, आदत पड़ जाएगी फिर उनको। तो आपके लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी, ताकि वो जिंदगी में कहीं भटकेंगे नहीं। आपको थोड़ा सा टिप दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप करिएगा। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से साथ। अच्छा जी, भैनों भरावो सब सारे नु, जे तुसी नहीं सुनिया पहला ते तुहानू सारियां नु नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आप उम्मीद रखते हो वीकेंड में भी आप अच्छा टाइम बता रहे हो। अभी इस बार लॉन्ग वीकेंड नहीं हुआ है, जुलाई 1st का, तो मिडल ऑफ द वीक आपको एकदम छुट्टी मिल गई वेडनेसडे की। तो कई लोग अपनी तरफ से ही लॉन्ग वीकेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई होती है ना कि हम लॉन्ग वीकेंड मनाने की। कभी कभी मेरे ख्याल बहुत सालों बाद ऐसे हुआ कि जुलाई 1st लॉन्ग वीकेंड को नहीं आई। तो अब आपके लिए, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो आपने और जानकारी लेनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स रोड काम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। उनके वहाँ आपके लिए लेटेस्ट बारबेक्यूज, आउटडोर फर्नीचर, सब कुछ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो आप जरूर उसमें जाइए और देखिए कि क्या कुछ वहाँ पे है आपके लिए नए नए अगर आपने बढ़िया फर्नीचर आउटडोर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। और एक लोकेशन आप उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूदा, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप जा सकते हो जी। आप फिर आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर, और ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप कॉल कर सकते हो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने मूव होना है तो आज के मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं। तो आप मूविंग के लिए आज ही उनका ट्रक बुक कर लीजिए। समर है, बहुत बिजी होते हैं। 416-524-404-1652-46704 पे एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने लंदन के आसपास इलाके में रहते हैं, आपको कलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए अब लंदन में मौजूद है। तो आप मास्टर कलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। किचनर वाटरलू गोल्फ में अगर आपने घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब टेंट को कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। 519-546-1260 पे कॉल कर सकते हैं। आपने खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए न्यूली रेनोवेटेड है और बहुत बढ़िया ब्रिटानिया क्राइटेरिया मौजूद है। तो आप और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल कीजिए। 905
814-1730 अपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए 1715 में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप 905-600-2000 पर कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको बढ़िया बढ़िया आपको किसी तरह की भी आपको बढ़िया बढ़िया सामान लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा, वहाँ भी आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज, बहुत बढ़िया सामान आपको मिलेगा, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर। तो आइए अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो पंजाबी का गीत लता जी के गाए हुए तो लता जी का गाया हुआ कोई पंजाबी सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। उन्होंने हीर बहुत ही बढ़िया गाई है, कई लोगों ने आर्टिस्ट जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने गीत गाए हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओह या देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग लता जी सैंग, लाइयां दे तोड़ लवानी छड़ के ना जावेगी, बट दैट वाज एट दैट टाइम व्हेन दैट सॉन्ग केम आउट एवरीबॉडी बस सिंगिंग है। आप जानते हो इंडिया में तो लोग सड़कों में गलियों में कहीं भी गीत गाते हैं ऐसे कॉमन सॉन्ग।

आप जरूर पसंद आया होगा प्रोग्राम तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो सराहते हो हम आपका आते हैं दिल से धन्यवाद करते हैं उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हमें आपका साथ मिलता रहेगा क्योंकि अगस्त के महीने में 94 में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो 31 इयर्स हो गए हैं प्रोग्राम को करते हुए तो इसीलिए आप का साथ मिल रहा है तो इसीलिए हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है या फिर आपने बढ़िया बढ़िया आपको फर्नीचर चाहिए आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए बारबेक्यू चाहिए किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है बहुत बढ़िया रेट पे बढ़िया क्वालिटी में। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी वीकली स्पेशल देख लो फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045-799-0045। आपको आप लंदन के आसपास रहते हो आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो अब लंदन में गोर रोड पे मौजूद है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लो और फोन कर लो। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो खुशवंत सिंह बैंस को कॉल करो 416-670-1313-416-677-1313 पे आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने मूविंग करनी है तो आपके लिए HK मूवर्स बहुत बढ़िया सर्विसेज कनाडा भर में मदद करते हैं मूव होने के लिए तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो मूविंग के लिए 416-524-4416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए पंजाबी के गीत ही सुनाएंगे लता जी के ही सुनाएंगे सो लेट्स

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे इसी तरह का बढ़िया सा मनोरंजन लेकर के। आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। तो तब तक के लिए नानक नाम चढ़ती चला तेरे पाने स्वद्धा पला है वंडरफुल एंड सेफ डे। गर्मी बहुत है, खूब सारा पानी पीजिए और कोशिश करिए ठंडी जगह में रहिएगा। खास करके जो एल्डरली हैं उनके लिए मेक श्योर करें कि खूब सारा पानी हो उनके पास, ज्यादा गर्मी में ना अपने आप को रखें। तो टेक केयर। इस गाने को एंजॉय कीजिए आज भी फिल्म का।

0: स्पेशल्स देखने के लिए आपको apnibol.ca पे जाइए। आपको को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5500 पर कॉल कीजिए। 905-456-733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: बाबूजी कमाल।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Tal gur seviya ahnis sahaj subhai darshan parsya guru ka जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसंदी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कुटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया

गुर कै शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देह बुझाई हर जियो तुद विटहो वारिया सद ही तेरे नाम विटहो बल जाई शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुर दाता जित मन राता हर स्यों रहया समाई शब्द न जाने।

मनमुख मुगद गुबारा अपि कर विख मार्ग लाए पाई तिस बिन अवर न कोई जो तुर लिखिया सो कोए न मिट पाई करता करे सो होई नानक नाम वस्या मन अंतर पाई अवर न दूजा कोई अपि कर विखै मार्ग लाए पाई।

कर्ता करे सो होई, नानक नाम वस्या मन अंतर पाई। अवर न दूजा कोई, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसर है तू स्वामी, जाना बरस पचासा, हम मूड़ मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द प्रगा

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545126000.
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

0: कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं ता कहना घर ही भेज दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
4: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
3: 905-564-6444।

0: 92 55 80 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते।
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828 9054502828।
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222।

0: हमें इस ये बात सुन के हैरानी नहीं होगी, हमें ये बात सुन के हैरानी होगी गवर्नमेंट एजुकेशन स्पॉन्सर कर क्यों रही है, मतलब जो गवर्नमेंट वहां पैसा फूंक रही है तब हमें लगता है चलो हैरानी नहीं होती। तो गवर्नमेंट इसलिए कह रहे हैं आप एनरोल करें, पीछे ना रहें, आपके सारे आस पड़ोस वाले एनरोल कर चुके हैं, अगर फैमिली ऑफ टू है तो अप टू 45,000, फैमिली ऑफ थ्री है तो अप टू 60,000, फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, $80,000 आता है, फैमिली ऑफ फाइव है अप टू $100,000 आता है, अगर आपके तीन बच्चे हैं चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं देर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स आज की डेट में, और हस्बैंड दोनों पढ़ते हैं $50,000 आया उनको ग्रांट का आया सिर्फ 50,000 फैमिली ऑफ फाइव में, और साथ में $50,000 जो नेक्स्ट $50,000 वो ऑप्शनल लोन है 0% पे।
1: नागपाल साहब ये जिहड़ी फंड है जदों अज कोई तुहानू कॉल करे ते अप्लाई करन नू किन्ना क समां लगदा, ते जदों एक वारी अप्लाई हो जांदा फंडिंग कदों क तक खाते च आ जांदी है, ते तुहाडी फीस किन्नी है जी?
0: हम इसमें अगर आप हमें मंडे कॉल आज भी आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरा स्टाफ कॉल लेने के लिए तैयार है नंबर वन। नंबर टू, आप अगर मंडे को अप्लाई करते हैं तो पहले आप हमें कॉल करें, एस्टीमेट ले कितने बनते हैं आपके इनकम, कितना बनता है आपका ग्रांट और लोन, ठीक है? उसके बाद आप मंडे को एनरोल करते हैं, 30 से 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती है, जितना आपको एस्टीमेट देंगे उससे 500,000 ऊपर नीचे आएगा, पहले बता रहे हैं। अब 40-50-70,000 की बातें करें तो 500 ऊपर नीचे रहता है गवर्नमेंट के डेटा में, ठीक है? ओके, अब इसमें कहते हैं 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट फंडिंग आती है, हमारी फीस कितनी है? कोई कैच नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, सिर्फ $199 या $499 फीस है। ऑनेस्टी से हम काम करते हैं, मीठी बातें नहीं करते, पहले हम पैसे कुछ लेते नहीं है, बाद में आप लोग देते नहीं है काम होने के बाद, बट तब भी वी आर हैप्पी।
1: तुहानू पैसे जरूर ऑनेस्ट, साडे परिवार जिहड़े ने पूरी ऑनेस्टी नाल, जे तुसी काम करदे हो तां पूरी ऑनेस्टी दे नाल सारे एक्सपेक्ट करदे ने तुहानू भी पे, एंड तुहाडी ऑनेस्टी वाकई, क्योंकि मैं तुहानू दस देवां दोस्तों जिहड़ा कोई बिजनेस अदारे नाल असीं किवें जज करदे हां, चलो मिलते हैं गिलते हैं सारा प्रोसैसिंग चेक की जाती है, इस तों बाद जिहड़ी अज तक नागपाल साहब ने कदे भी मैनू कहन दा मौका ही नहीं दिता कि भाजी अपने महीना पूरा हो गया तुसी पेमेंट रहिंदी है, महीने तो पहला चाहे इनवॉइस मैं भेजन दे विच लेट हो जाए इनवॉइस यह नागपाल साहब आप टाइम दा ध्यान रख के पैसे सेंड कर देने। सो कहन दा भाव इत्थों बंदे दी ऑनेस्टी, बंदे दे कम करन दा तरीका वह पता लगता। तो वाकई नागपाल जी लास्ट वीक अपने कोल ऑफिस दे विच भी आए सी, ते इन्हां ने जिन्ने सवाल इन्हां तों पुछे बेवाकी नाल जवाब दिते, यह कहिंदे असीं इक जरिया, तुसीं सरकार ने ग्रांट ते लोन देना, तुसीं उहदे लाभकारी हो, असीं उहदे च हैल्प करनी है ताकि तुसीं कोई कोई गलत फार्म ना भरिया जावे, कोई गलत टाइप ना हो जाए, तो तुहानूं उह स्कीम दा चंगे तरीके नाल लाभ मिल सके। सो नागपाल जी इहदे विच बड़ा चंगा काम कर रहे हो जी, कंप्लीमेंट है तुहाडे लई, ते धन्नवाद। सो अज जे तुसीं कॉल करदे तुसीं ओवर द कॉल ही परिवारां नूं दस दोगे कि उह किन्ने क फंड लई एलिजिबल ने जी?
0: आज हम लाइक डेटा ले लेंगे,
1: मतलब ओवर द कॉल ही तुसीं दस सकदे हो
0: बेसिक किस ओवरकॉल दस सकते हैं, बट अभी मेरा एक ही स्टाफ काम पे है।
1: नहीं नहीं चलो वो तो नो प्रॉब्लम, एक बार कॉल आ गया मेरे कहने का भाव तुहानू असी ऑफिस आके मिलना पूजा, ओवर द कॉल ही तुसी सानू दस दो।
0: ओवर कॉल भी हो सकता है, प्रॉपर ऑफिस है टिम हॉर्टन में नहीं मिलते जी, हर डायरी डायरी पे प्रॉपर ऑफिस है हमारा, आप ओवर द कॉल पे एस्टिमेट ले लें हमसे, आपको फिर लाइक आपकी जितनी इनकम कम है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर रही है, बैंक नहीं कर रहा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो है आप एलिजिबल हैं, आपकी इनकम 2024 के एनओए पे कम है अगर $70,000 से, आप सिर्फ तभी हमें कॉल करें क्योंकि तभी आपको फायदा है, और आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ है, चाहे आप पेंशन पे हैं, चाहे आप 75 के, चाहे आप 30 के हैं, आपके किड ज्यादा है, ज्यादा फंडिंग बनती है आपकी, आप सब लोग एलिजिबल है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है ना। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड देन टाइम कम रह गया है, टाइमली अगर आप एक्शन लेंगे तो ही आपको फायदा है,
1: नंबर साझा कर,
0: आपका फायदा है ज्यादा, आपका है, हमारा फायदा बाद,
1: नंबर साझा कर,
0: $200 है
1: जी।
0: हाँ जी, नंबर है जी 437-234-31-75, 437-234-31-75, 437-264-317-5।
1: सो दोस्तों जे कोई गवर्नमेंट स्कीम दे रही है तो उहदा फायदा चुकन दे विच आपां नूं भी दोरा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इहदे विच कोई ये नहीं है कि कल्ली ग्रांट आ जां लोन आ, एजुकेशन फ्री हो रही है तुहाडी, सब तो मेन चीज़ आ गवर्नमेंट कहदे लई आ कि उह एजुकेशन लई किहड़े किहड़े कोर्स ने, किहड़े कोर्स का की फायदा हो सकता, अगले लिंक दे विच होर बहुत सारी गल्लबात करांगे, पर तुहाडे मन दे विच कोई क्वेश्चन आ नंबर टू कॉल, ये नंबर घुमाओ 437-264-31-75। नागपाल जी 437-264-31-75। 3175 4372643175 4372643175। बहुत शुक्रिया नफर सर, धन्यवाद जी,
0: थैंक यू।

0: फंडिंग के दो पार्ट्स हैं, एक है ग्रांट्स, एक है ऑप्शनल लोन। डिपेंड करती है फंडिंग आपके फैमिली साइज पे। अगर आपकी इनकम कम है, बैंक फंडिंग नहीं दे रहा, गवर्नमेंट दे रही है, जितनी इनकम आपकी कम है फैमिली की, लोग शर्माते हैं फोन करते हुए, सर हमारी इनकम सिर्फ 5,000 है। अरे भाई साहब, अगर आपकी 50,000 होती तो आप हमें फोन ही ना करते, आपको फायदा था इसका। इनकम जिनकी कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, उन्हीं को फायदा है। फैमिली ऑफ टू को अप टू 45,000 फंडिंग आती है। फैमिली ऑफ टू को, हस्बैंड वाइफ है, यंग है चाहे ओल्ड कपल है, 45,000 की फंडिंग, 25,000 ग्रांट। और अगर फैमिली ऑफ फाइव है, तीन बच्चे हैं आपके, तो फंडिंग बढ़ जाती है, $100,000 तक चली जाती है फंडिंग, 50,000 तो उसमें से ग्रांट ही है, ग्रांट पोर्शन आज के रेट में है, मिल रहा है, ले लीजिए। आपके सारे दोस्त आस पड़ोस ले चुके फंडिंग को पहले से ही।
1: क्रेडिट स्कोर हिट होंगे, क्रेडिट स्कोर चेक होंगे, सिस्टम है?
0: इसमें कोई भी क्रेडिट चेक नहीं होता। इंटरेस्ट भी जो अगर लोन भी है ऑप्शनल है, अगर एक साल का कोर्स है तो एक साल तक इंटरेस्ट 0% है। डेढ़ साल बाद तब उस लोन को देना शुरू करते हैं, तब ब्याज दर क्या है 2.5% पूरे साल का, 2.5% कहीं नहीं मिलता आपको। और एग्जाम्पल देते हैं एक छोटा सा, अगर आप घर की मॉर्गेज लेते हैं, जैसे अपना एग्जांपल लेता हूँ, 2500 मॉर्गेज थी, 1500 ब्याज, 1000 प्रिंसिपल, ठीक है, 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 50,000 का लोन ले रहे हैं, उस पर सिर्फ $5,000 का ब्याज है 10 साल में जो देना है आपने, 10 साल का ब्याज सिर्फ 50,000 पे, $5,000 कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग है ये, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग है ये।
1: वेरी गुड। तो किस डिपार्टमेंट लो फंडिंग होंगी?
0: ये है सर्विस कनाडा, ना CRA नहीं जिसे लोग डरते हैं, CRA नहीं है यहाँ पे।
1: ओके, ते एहे पहला ता डिकोल आउंदी है, फिर खाते च आउंदी है कस्टमर दे जाके में?
0: नहीं, आज आप एनरोल करते हैं, 30-90 डेज में आपके खाते फंडिंग आती है, क्लाइंट के खाते में फंडिंग आती है, जिसका मेजर पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, ऊबर ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रक ड्राइवर, पेंशनर है, कॉल करें, असेसमेंट अभी कराएं, ऑफिस आए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आप ना करें, ऑलरेडी सभी लोग लाह ले चुके हैं।
1: ते इहदे विच डेडलाइन की है जी? हुण
0: 10 दिन रह गए हैं जी, 18 जुलाई के आसपास, देन गवर्नमेंट का नेक्स्ट अकेडमिक सेशन जब स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक 22 जुलाई के बाद से, तो उसमें ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, जो गवर्नमेंट LGBT में 100 बिलियन की फंडिंग दे रही है, जो गवर्नमेंट यूक्रेन को 30 बिलियन दे चुकी है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन में 4 बिलियन जो लगाती है उसका भी 2 बिलियन कर रही है, हाफ कर रही है, कट्स कर रही है गवर्नमेंट फंडिंग को। तो अभी एनरोल करें, पीछे ला रहे हैं।
1: एज लिमिट एक बार दोबारा दस दो जी, एज लिमिट की है, ते की जिहड़े पेंशन ते ने सिंगल मदर ने वो भी एलिजिबल ने?
0: आज भी कम से कम 3 सिंगल मदर ही एनरोल हुए हैं, आज भी ऑफिस ओपन था हमारा, सिंगल मदर विद 3 kids, 2 kids थे, एंड देन देयर इज नो कैच इन इट, आप चाहे 75 इयर्स के चाहे आप 30 इयर्स के, पेंशन पे आप एलिजिबल है, कॉल करें हमें अभी, असेसमेंट कराएं, इस चीज को मिस ना करें, आपका फायदा हाथ ही जितना है सर, हम कोई इसमें कुछ कैच नहीं है, हमारा फायदा चीटी जितना है।
1: ते चीटी जितना कितना फायदा है जी, ताड़ी फीस कितनी है, ते फीस देनी कदों?
0: इस काम में कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है जी यहाँ पे, कोई कागज नहीं मिल रहे आपके यहाँ पे कोई भी, गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से है, क्या लगता है नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, उसमें क्या एडिट करेंगे आप, गवर्नमेंट को क्या चढ़ा के देंगे आप वहाँ पे, तो इसलिए कोई सेटिंग नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई नंबर की हेराफेरी नहीं है। फीस कितनी है? जब सेटिंग नहीं है तो फीस भी सिंपल सी है, कितनी, $199 या $499 शुरू में देनी है? नहीं, आपके अकाउंट में जब फंडिंग आती है, आज बैठ के मैं हिसाब लगाया, 110 बंदों की फंडिंग गिर चुकी जिनसे हमने पैसे भी लेने हैं, तो उसमें से $199 या $499 फीस है, फ्लैट फीस डिपेंडिंग ऑन कोर्स, वन टाइम फीस है, कोई कैच नहीं है, नो बीठी बातें।
1: 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 अखीर दे विच सानूं दस दो जे कोई हसबैंड वाइफ ने दो बच्चे ने उरू सिनेरियो ते की फर्क पैंदा, 3 बच्चे ने 1 बच्चा उहदे नाल फंडिंग वधदी है जां घटदी है?
0: जितने ज्यादा बच्चे, जितना ज्यादा फैमिली साइज, उतनी ज्यादा फंडिंग। फैमिली ऑफ फोर को अगर आपके दो बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, बच्चे चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, देयर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, आसान सा कोर्स कर रहे हैं जी हम आपको, 45 या 35 इयर्स की एज में बैकपैक डाल के टिफिन बॉक्स दे के स्कूल नहीं भेज रहे, आसान से कोर्स है, फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, तो अप टू है 80,000 की फंडिंग मिलती है फैमिली ऑफ फोर को, जिसमें से $40,000 तो ग्रांट, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एट 0%। अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 100,000, ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ 50,000 ਗ੍ਰਾਂਟ, ਰੈਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ 50,000 ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਐਟ 0%। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ ਆਪਕੀ, ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੈ।
1: ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੋ,
0: 437-264-31-75 ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਓ ਜੀ, 437-264-31-75 437-264-31-75
1: 437-264-31-75 ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ 647-921-2032, 647-921-2032 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-233-73-68। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਦੀ, ਕਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਸੌਂਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਗੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਆਓ ਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।

0: ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਓ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। 416-233-7368 ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਖਿੜਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਂਟੀ ਸ਼ਾਂਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿੰਕ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਸਟ ਕਾਲ 9090 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਸੀ ਹੈ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਜੀ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈਂ?
1: ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ।
0: ਲਾਲ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ।
1: ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋ ਇਸ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ, ਓ
1: अकॉर्डिंग टू समझीजिए आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इन चीजों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ
0: जी।
1: और रंगों से इलाज भी होता है, कई वक्त रंग से भी इलाज करते लोग, तो कलर के बड़ा इफेक्ट होता। तो बहरहाल मुझे तो गुलाब पसंद है और आपके एंड टॉपिक के मुताबिक है, गाना भी याद आया मुकेश साहब का है
0: जी,
1: और बड़ा चंगा गाना है अपने जमाने का, राजेश खन्ना, मुमताज और शशि कपूर पे पिक्चराइज हुआ कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करेंगे कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। क्या लिखते साहब, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना है और जो है उस्ताद खमर जलालवी के शागिर्द है, मैं खुद अपनी आंखों से देखो, चरण स्पर्श करते थे बॉम्बे में, वो इतना चाहते थे उस्ताद खमर को। खैर बहुत बड़े लोग थे इसलिए इतने बड़े बड़े गाने लिखते, मगर बड़ा प्यारा गाना है, आप हो सके तो लगा दीजिए। और इसमें जो शायरी है और जो फूल की खूबसूरती और ये नजाकत बताए मोहब्बत की
0: जी,
1: मैंने समझता ऐसा अब कोई लिख सकता है
0: जी। टाइटल एक बार आप फिर बता सकें प्लीज मुझे?
1: फूल फूल आहिस्ता फेंको,
0: फूल आहिस्ता,
1: फूल बड़े नाजुक होते हैं,
0: ठीक है।
1: गालिबन प्रेम कहानी नाम था शायद पिक्चर का, राजेश खन्ना, मुमताज, शशि कपूर।
0: ओके,
1: अगर आप मुमताज राजेश खन्ना डालेंगे तो भी आ जाता, उन लोगों की ये तो जोड़ी मशहूर थी, दे आर लाइक शाहरुख खान एंड काजल की तरह मशहूर थे अपने जमाने में दोनों।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मुमताज और राजेश 50 सुपर डुपर हिट पिक्चर दिए दोनों। बहरहाल ये गाना बड़ा मगर चंगा है, इसमें मुकेश साहब की जो उठान है ना
0: जी,
1: मैंने समझता बड़े बड़े देखा अभी भी आज तक, मगर वो मुकेश जैसा बंदा अब नहीं आ सकता, ना रफी जैसा, ना किशोर जैसा, ना जगजीत सिंह जैसा। ये वो लोग हैं जो जिंदगी पूरी गुजार दी है रियाजत के लिए, पैसे के पीछे कभी नहीं भागे, पैसे को लात मारते थे, पैसा उल्टा आता था इनके भाग के, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, ये हमेशा बोलते थे पैसे को, जाओ यहाँ से, परे जाओ, दफा हो जाओ, नहीं चाहिए
0: जी।
1: ये वो लोग,
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप जरूर प्ले करेंगे, थैंक यू सो मच, जरूर एक गाना प्ले करेंगे। सो केड़े फुल दे नाल तुसी रिलेट करदे हो जी अपने आप नु, या केड़ा फुल तुहानू पसंद आ? कोई कोई कोई सवाल नहीं है, तुसी सोचोगे भी कि परम की पुछ रही है, पर कई बार की हुंदा है कि जिंदगी च असीं बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां सोचते हुए छोटियां गल्लां इग्नोर कर देने। कई बार असीं जिहड़ियां अपनी सानू की पसंद आ की नहीं पसंद, कई बार साडियां इह जिहड़ियां छोटियां छोटियां जिहड़ियां गल्लां जिंदगी दियां हुंदियां ना, कितें वड्डे बोझ दे थल्ले दब के रह जांदियां। सो सवाल तां इह नहीं हैगा, पर फिर भी मैं थानू पुछ रही हाँ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਜਿਕ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? 416-233-7368 416-233-7368

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं, ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं। तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में, अजीब मुख्तलिफ रंगों में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो, बाद में इसे जला भी देना। वैसे तो नशा बुरी चीज है, पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना। बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है, या यूं कहिए कि एक जैसी होती है। हाँ, रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल। गुलुकार है जगजीत।

झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन, चांद को देखना किसे पसंद नहीं। चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।